0: Pakistan ka aur ye istana mein sarkar ne sudhar kar ke ne sara rasta mein dikh ke gadi khatam rakha hai samne ka ye sam CIA ko sasa ka mushkil ka bola
1: आखिर डॉक्टर ने कहा कि गुजरात लगी और फिर उसने अस्पताल काठमांडू
0: अस्पताल इंजेक्शन मल्टीपिंग पॉपुलेशन

विश्व भर का रोटरी फ्रेंड्स एवं कैप्टन क्लब द्वारा जय हिंद कलाजी प्रस्तुत संदेश।

0: सुजीत प्रिया मेरा सहकारी का डिग्री किसी मछर फल के रूप में बताऊ पायो इस रखी तथा क्षेत्र 25 पति प्रधानमंत्री शहरी नेपाल स्थित देश विभिन्न देश का राज्य तथा कूटनीतिक नियोक्ता प्रमुख सामूहिक भेटर संवाद करने भाई थी।
1: प्रधानमंत्री शाहले

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का निर्मित स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में टिकले यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पदार्थ करे कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती।

ना 3 लाख रुपया रेल लगा रही 3 लाख रुपया क्रेता कैसे जमा की रेल है पर कई पत्ते अभ्यास तीन अपराध किया था अपना थाना सेवा वो अवस्थे अपना सावो अभ्यास रहेगा 3 लाख रुपया से 4 दिन अपना

0: स्वास्थ्य रिपोर्ट दिया। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी की प्रतिबद्धता का टी नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वर रूप में टिकले यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल प्रकार ऐसी कौशल्य अस्पताल भाषकरी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा दी। अस्पताल से दे देना सेवा चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैसी था।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ चोरी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब को सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिस को मुगा मिला नशा दार बैलक हाथ कोरा अनि चलना बिरामी कनकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्चर थेरापी विधि बसे उपचार कैसी था।
0: नशा दर्पीले बिरामी के बिना अपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्चर थेरापी से सफल उपचार कर
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैसी था। नशा है नागरिक एकल महिला अनाथ।

0: करना और दोनों के अवांछनीय गतिविधि करना गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो।
1: युनिक नेपाल नवनीत वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियो पूर्वाह एवं कसरा कार्यमा जनहित में जारी संदेश।
2: ल्याएको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावहरूबारे छलफल गरौं।
3: बाल बालिकालाई उचित शिक्षा संस्कार समय दिने हामी अभिभावकको दायित्व हो।

0: 会绝对。你要什么？安全人员超过一级，第二超过一级了。安全人员对前面的第二级对前面的。
1: 有，俺当时不住在那，俺结果住在那山上，其他几个人把手里头打了两下，那可里把这人不住在那山上，我起来的比。लागू पदार्थ को एक तरह को प्रयोग मानसिक समस्या और पढ़ाई में असर पुर्यान सकता
2: साथी को दबाव में होइन आपको सपना को पक्ष में निर्णय करूं
1: तनाव भए खुला कुरा गरौं समाधान लागू पदार्थ होइन
2: लागू पदार्थ टाड़ा बसौ स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौ
1: रेडियो गुर्खा कार्यक्रमको सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रियाबाट जनहितमा जारी सजेस

0: ये चिट्ठी पश्चिम अनुरोध संपत्ति अरुणाचल कराशी चयन में भी बना सकता उन्हें उससे बनना आजादी नियंत्रण करना हम आप सबको का दायित्व का कर्तव्य हो हमें सब कुछ आकर मरना क्षेत्र में हम रेखा बनेगा सुखा तुम्हें अलग से आकर आकर मरमत समारोह से सफाई करी
1: बीड़ी चुनौत नाखुर टीका आदि बुटाई बनमोल ने फाटी
0: बनो पर भाव देने में काम नहीं करी
1: बनमो पिकने खाए गए से वो क्षेत्र में रहे आदि बना से बुटा के कहना छोड़ी
0: सुखा मौसम में बनों में आगे लगना दोस्तों सवारी लौटा लेकर भी नहीं
1: वनमा आगे लगे देखा से लगभग वन कार्यालय सामुदायिक वन को प्रहरी खबर करी सब कुछ में सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई वन क्षेत्र अनुसार वनों में आगे लगेगा राजा की

खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान मदिनामा सेतु नगरी, तनाफल नियन्त्रण करी, आज निर्दय कालिक जीवन रचा, निशा मारो रोसे माथि स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यले भर्तियासी जनयुक्त लागि सन्देश।

0: संचार सेवा सभापति कुमार सुरेश प्रभाव स्वागत भाषण करिए सभा में कुमार उत्पादित हमारे संदेश पर दिया था साथी एफएम राजापुर पार्टी रेडियो प्रतिपोध एफएम कोलपुर रेडियो खाते मोहर चांदी गांव पालिका बाकी मासिक किसान प्रसारण भी किया हमारे संदेश का परिदय मुख्य मुख्य समाचार के शीर्षक में से वासुदेव नगर पर संचार का सहयोगी जब सांस्कृतिक और फैशन प्रकाश समय को महत्वपूर्ण निर्णय वासुदेव का 9% से ध्यान होना थी 90% से ध्यान माध्यम अमृत पर ख्याल रासायनिक और पूरे मुख्य कारण भारतीय का 5 तारीखा में बिहार कक्षा शुरू समस्या राष्ट्र पाठ्य तक प्राप्त करना समस्या गणतंत्र दिवस बनाए लुम्बिनी में समिति गठन वो प्रधानमंत्री शाह एक ही उद्देश्य कर रहा तो कम से कम सामिक शिष्टाचार ध्यान डालता
1: समाचार नगर पालिका में नगर गोर्खा संघर्ष का कचहरी में महत्वपूर्ण निर्णय का दिन चल रहा रेडियो गोर्खा वाइफ का आयोजना पांचकाली नौ बाछागढ़ का ज्येष्ठ वर्ग दर्शनधारू अध्यक्षता में बैठक कचहरी सांस्कृतिक संरक्षण कार्य व्यवस्था और सामुदायिक सक्रियता को लेने विषय में ठोस निर्णय कर कचहरी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान तथा वर्गर मैक मिलन कार्यक्रम महीना 2083 साल फूस 27, 28 और 29 गति सम 3 दिन महीना निर्णय करेगा कार्यक्रम संचालन कला बांसगढ़ी नगर पालिका पची 5 लाख रूपया आर्थिक सहयोग मांग करना निर्णय समेत पसी 2078 साल में नगर सभापति पारित की बल गए 2078 में 5 वर्ष बीटा बैठे राजपथ में प्रकाश निर्विधक प्रति ध्यानाकर्षण करेगी वो इन हानि से हानि राजपत्र में प्रकाशित नगर पालिका में अर्जी करना निर्णय करेगा अचार मछे थर्मा मरवा बनाए जिला आवश्यक जगह छुट्टेगा जिम्मा जगैना कार्यक्रम संचालन करना तथा माखन धाम तथा गांव होना आगन क्रियाशील बनाए प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रम जुटेना विषय में सहमति जनाएगा कचहरी में रेडियो कुर्मा कार्यक्रम को कार्यकारी निर्देशक त्रिकराज चौधरी स्टेशन मैनेजर पुष्पा चौधरी लगायत का वर्कर नगर वर्धन का उपस्थिति रहा राष्ट्रीय नगर पालिका क्षेत्र में वैज्ञानिक माटी परीक्षण अभियान में 90% से ध्यान माथि अंगीय पंजीयत पर्दा चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में नगर पालिका से 285 माटी नमूना परीक्षण करेंगे 6% माथि अंगीय पंजीयत पर्दा की शिक्षा

0: तकरीबन आवश्यक अवस्था बारे जानकारी देना पड़त परिवार का पुत्र बाकी अवस्था अनुसार मन प्रयोग को आवश्यक उपचार कराए सुझाव समय के वहां जानकारी दिलवा पार्टी प्रशासन सुझाव देकर कृषि उत्पादन वृद्धि करना उद्देश्य ने नगर पालिका मंदिरी कोड़ा में माटी परीक्षण शिविर संचालन करते सरकार हम खेत खाली फैलो अवसर पारखन गांव परमा पोखर नमूना संकलन तथा परीक्षण कार्य विचीर्ण कृषि शाखा जारी जवा किसान माइकी विग्रह नीति नगर पालिका जनकवासी 2500 क्विंटल कृषि चून निःशुल्क वितरण करना कृषि राज्य बिहार समेत उपलब्ध करने जवा नगर पालिका में माटी परीक्षण मिनी लैब प्रयोगशाला वस्ता को किसान सहज रूप में सेवा दिवस सीखना तथा उद्देश्य ने माटी नमूना संकलन करना पालिका समेत
1: पांच पालिका का विद्यालय में बिहानी कक्षा शुरू कर जिला का 8 पालिका मध्य 5 पालिका बिहानी का समय में कक्षा संचालन शुरू कर लपेट दिन का तातुल हावा चल लगे सब विद्यालय बिहान 6 से 11 बजे संचालन कर लगो तरह कारण विद्यार्थी प्रभावित बिहानी कक्षा शुरू करोरिया नगर पालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख सतीश यादव पटेल बाटिया का गुलरिया ठाकुर बाबा नगर पालिका तथा केवल गांव पालिका में बिहानी कक्षा शुरू सेटल राजापुर नगर पालिका और पर्यातल गांव पालिका में समस्या विद्यालय में एक घंटा निकटा था बिहान का कक्षा संचालन करना जिम्मा विद्यालय खाना जो डिग्री बाद विद्यालय का अवस्था एक कक्षा संचालन करा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आना जिम्मेवारी डिग्री लग बढ़िया काल गांव पालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वराष्ट्र काल वर्ग निर्वाच पासवरी नगर पालिका बारह बजे मधुबन नगर पालिका पर आदि समय विद्यालय बिहान 10 बजे से दिन का 4 बजे संचालन करते बिहानी कक्षा संचालन करने बारे में आदि समय पूर्ण निर्णय पांच पड़ी नगर पालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख

अधिकार प्रस्तुतिकरण से जो कार्यक्रम किया गया आप राष्ट्रीय समाचार पत्र

0: अरे हुकर ढुर जना परी चला काट था रिन लेगा समर में किस्ता किरना करती रहा कोई तो लघु वित्त संस्थान को नट मन जीत से लगा था सब की रिन पाले था
1: सब कोई हम तो हो गो रिन का पवन सिंह ना चरम तीन बड़े लाकर से कहा भाई रिन संस्थान का रखे रखो वह क्रम लगाए पड़ा तब लघु पर बची हुई
2: संस्था से कर्ज ले से कृपा से तुम पर शर्त पहुंचे कर्ज भुगतानी का बार ऋणी कानूनी और नैतिक दायित्व हो।

0: हमारा पूरा ऊपर बचा था हमें हस्ताक्षर कर लगती एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो वनस्पति और वन्य जंतु संरक्षण में तथा मानव जाति जीवन संभव निगुण हमला बसे यहाँ पर संरक्षण में हम सब ये जुटी
1: पश्चिम अमूल्य संपत्ति आकाशी तथा आवश्यकता से बना आगामी नियंत्रण करना हमारे सबों का दायित्व कर्तव्य हो हमें सब कुछ अपन बोलना छिटा रेखा बनेना सुखा समय अंदर से आकर बर्तन मदद समावेश सफाई करी
0: बीड़ी चूरट मासू टीका आदि उठाई अनुमान निभा की

की पड़ी। वो अपराध मुक्त तरीकों को सजाए भागीदारी बनी। डिजिटल कर कार्यालय बढ़ दिया। फोन नंबर 084

सत्री खाना खाई व्यायाम सब करी धूम पान वगैरह में से तू रही तरह भर नियंत्रण करी आज निर्णय का जीवन रोग में से स्वस्थ जीवन।